0: वक्त कभी कभी किसी खत की तरह दिल के दरवाजे पर छोड़ जाता है कोई भूली बिसरी याद, कोई भूली सी दास्तां, लम्हा लम्हा एक पूरी तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। सन 2000 तक पोलियो मुक्त विश्व का सपना साकार करने

0: अच्छा ने किया है
1: Times FM
2: राधे श्याम
0: अरे राधा ये किस फिल्म का गाना है
2: ये गाना नहीं है भाभी ये एक दुकान का नाम है जहाँ रंग बिरंगी हैदराबादी नेचुरल फ्रेश वाटर पर्ल्स की प्रदर्शनी लगी हुई है
0: तुम मुझे वहाँ ले चलोगी
2: क्यों नहीं जरूर और आपके लिए 10-25% की छूट भी है
3: Teens Today, the magazine for teenagers from India Today.